0: यल्ला
1: तेरी बाहों ने मुझे
0: हाँ नल्ला सुभान अल्लाह
1: तेरे बिना ये घर अधूरा लगता
0: यल्ला यल्ला यल्ला